0: तौर पर तस्लीम करना चाहता है जहां से हम आज का प्रोग्राम नशर कर रहे हैं। SBS उर्दू इस जमीन के माजी और हाल के वारिसों और उनके आबाओ अजदाद को तस्लीम करने के साथ एबोरिजिनल और टॉरेस आइलैंडर्स को भी यहां के रवायती मालकान के तौर पर तस्लीम करता है।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं SBS उर्दू, जहां रिवायत की मिठास और जदीद दुनिया की रफ्तार एक साथ चलती है। मैं हूं आपका मेज़बान शादी खान सैफ। आज की इस खूबसूरत नशिस्त में हम आपके लिए लेकर आए हैं ताज़ा तरीन ख़बरें, अहम आलमी और मुकामी रिपोर्ट्स और आपके दिल के करीब रहने वाले कुछ ऐसे गीत जो क्लासिकी रंग भी लिए हुए हैं और नए ज़माने की रफ्तार भी। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं आज के अहम तरीन खबरनामे के साथ।

0: आप सुन रहे हैं SBS उर्दू, जहां हर आवाज़ एक नई कहानी सुनाती है। मैं हूं आपकी समातों का हमसफर शादी खान सैफ। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिए।
1: SBS फूड चैनल 33 पर आपके लिए लेकर आता है मुकामी और बैन अलाक़वामी माहिरीन के जरिए दुनिया भर के खुश जायका खानों का लुत्फ। SBS फूड 24 घंटे में किसी भी वक्त चैनल 33 पर।
2: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS audio app or website.
1: SBS TV और रेडियो चैनल के तमाम प्रोग्रामों से आगाह रहिए। sbs.com.au/guide पर जाइए। SBS ऑन डिमांड पर सैकड़ों टीवी शोज और फिल्में मुफ्त स्ट्रीम कीजिए। किसी भी स्मार्ट डिवाइस पर देखने के लिए SBS ऑन डिमांड ऐप डाउनलोड कीजिए या वेबसाइट।

0: पर जाइए। अपने फोन पर प्रोग्राम्स और पॉडकास्ट सुनने का बेहतरीन जरिया SBS ऑडियो ऐप है। एप्पल स्टोर या गूगल प्ले से SBS ऑडियो ऐप मुफ्त डाउनलोड कीजिए। माहिर उस्ताद शागिर्दों को आगे बढ़ाने के लिए नित नए तरीके ढूंढते हैं। SBS लर्न पर असाध्या के लिए निसाब के मुताबिक पढ़ाई का वसी जखीरा मौजूद है। sbs.com.au/learn पर जाइए।
1: SBS Audio
2: प्ले बटन दबाइए, नई दुनिया पाइए।
3: लाओ जी ऑस्ट्रेलिया, जुम्मे हाल में।
4: SBS Chill,
5: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है।
8: Far from the partisan politics.
0: 60 से ज्यादा ज़बानों में खबरें, दिलकश मौसीकी, पसंदीदा पॉडकास्ट, सौतों आहंग की दुनिया तक पहुंचने के लिए SBS Audio ऐप डाउनलोड कीजिए।
1: sbs.com.au/audio।
9: ब्रेक के बाद आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम है। आप सुन रहे हैं SBS उर्दू और मैं हूं शादी खान सैफ। सामईन अब रुख करते हैं एक इंतहाई अहम और संजीदा मौजू की तरफ। ऑस्ट्रेलियाई मुस्लिम कम्युनिटी ने हाल ही में अमेरिका में एक मस्जिद पर होने वाले हमले पर गहरी तश्वीश का इजहार किया है। इस वाक़े की तहकीकात ताहल जारी हैं और इसे मुमकिन तौर पर एक नफरत अंगेज जुर्म के तौर पर देखा जा रहा है। ये वाक़ा सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि रवादारी, मजहबी आज़ादी और समाजी हम आहंगी पर कई बड़े सवालात खड़े करता है। आइए सुनते हैं इस हवाले से हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट रिहान अलवी की जुबानी।
10: SBS उर्दू, SBS साउथ एशियन पर।
0: अमेरिका के शहर सैन डिएगो में एक मस्जिद में होने वाली फायरिंग की तहकीकात जारी हैं। पुलिस और FBI इसे नफरत पर मबनी जुर्म करार दे रही हैं। इबादतगाह के करीब वाके स्कूल से हमलावरों को दूर ले जाने की कोशिश करने वाले तीनों मकतूल अफराद की बहादुरी को भी सराहा जा रहा है। आइए जानते हैं इसकी तफसील। अमरीकी शहर सैन डिएगो में इमाम ताहा हुसैनी ने मुकामी बरादरी के अफराद के साथ मिलकर मस्जिद पर होने वाले हमले के तीन मुतासरीन की याद में एक दुआ या तक
11: We are here to honor Brother Amin Abdullah, Brian Climax,

0: SBS South Asian. New news from here and hits from home.
1: SBS Radio से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पर गुफ्तगू करें हमें पसंद करें और अपने ख्यालात का इजहार करें SBS उर्दू फेसबुक पर
2: SBS वर्ल्ड मूवीज आलमी कहानियों से कशीद की हुई एक दुनिया 24 घंटे सातों दिन चैनल 32 पर बिल्कुल मुफ्त या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम के जरिए देखिए
3: SBS उर्दू की इस नशिस्त में एक मरतबा फिर खुश आमदीद मैं हूँ शादी खान सैफ दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसे चैलेंज की जो आजकल तकरीबन हर घर की हकीकत बन चुका है यानी माली दबाव और महंगाई का बढ़ता हुआ बोझ ऐसे हालात में घर का बजट संभालना वाकई एक इम्तिहान बन जाता है लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मुआशी माहिरीन कुछ ऐसे सादा और मौसर तरीक़े बता रहे हैं जिन पर अमल करके आप ना सिर्फ इस जहनी दबाव को कम कर सकते हैं बल्कि अपनी माली ज़िंदगी को ज़्यादा मुस्तहकम भी बना सकते हैं मज़ीद सुनते हैं वर्दा वक़ार से
4: आप ऑस्ट्रेलिया को जानने में मदद के लिए SBS ऑडियो का तैयार करता पॉडकास्ट ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन सुन रहे हैं
1: सामईन ऑस्ट्रेलिया में रिटेल पेट्रोल और डीजल की कीमतें दबाव में हैं क्योंकि मौजूदा अमेरिका ईरान जंग अपने तीसरे महीने में दाखिल हो रही है बहुत से ऑस्ट्रेलियन खानदानों के लिए आरबीए के इस माह कैश रेट बढ़ाने के फैसले के बाद ये दबाव दुगना हो गया है लोग ईंधन पर ज्यादा अदायगी कर रहे हैं और साथ ही बढ़ते हुए ग्रोसरी बिल्स किराया रहन और दीगर जरूरियात को भी संभाल रहे हैं खुशामदीद ऑस्ट्रेलिया फ्यूल इन फोकस की इस किस्त में हम उन मुफ्त और आजादाना खिदमात पर नजर डालते हैं जो लोगों को माली दबाव को संभालने में मदद दे सकती हैं मेलबर्न के रिहायशी इम्तियाज अहमद आईटी में फुल टाइम काम करते हैं लेकिन वो अपने खानदान की किफालत के लिए वीकेंड और शाम को टैक्सी और राइड शेयर गाड़ी भी चलाते हैं
5: One job is not enough for their, you know, survival. My car, unfortunately, take diesel, and where I used to spend around $103, $105, now it gone up to around $160, which doesn't, like, you know, really help me. So things are quite tough for everyone.
1: इम्तियाज अहमद कहते हैं ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें मसले का सिर्फ एक हिस्सा हैं कम मुसाफिर ज्यादा प्लेटफॉर्म कमीशंस और रोजमर्रा जिंदगी के अखराजात ड्राइवर्स के लिए गुजारा करना मुश्किल बना रहे हैं
5: The other day I just went to the airport to pick up my ride like you know been sitting there for nearly 4 hours didn't get anything 1:30 2:00 in the morning just come back home empty I could have been spending time with my family but I was just trying to make my living
1: Imtiaz Ahmed ab National Debt Helpline se rabta karne par gaur kar rahe hain ye ek muft azad aur khufiya service hai jo pure Australia mein dastiyab hai ये हेल्पलाइन माली दबाव का सामना करने वाले अफराद को माली मुशीरों से जोड़ती है जो उनके हुकूक की वजाहत कर सकते हैं और उनके इख्तियारात पर बात कर सकते हैं नेशनल डेट हेल्पलाइन की विकी स्टाफ कहती हैं अब बहुत से लोग अपनी आमदनी का ज्यादा हिस्सा ईंधन और खुराक जैसी जरूरी अशिया पर खर्च कर रहे हैं जिससे दीगर अहम अखराजात के लिए कम रकम बचती है
6: At the moment, we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive. But we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax office, also electricity debt and car loans as well.
1: मोहतरमा स्टाफ का कहना है कि बहुत से लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि उन्हें बैंक या क्रेडिट फ्राहम करने वाले इदारे से माली मुश्किलात के इंतजामात का मुतालबा करने का हक है
6: A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time. There's actually quite a few different options available to people and that's what financial counselors can talk about.
1: Mohtarma staff ka kehna hai ki mushiron ko sahi malumat aur amli ikhtiyarat farham karne ke liye kisi shakhs ki mali surat-e-hal ko samajhne ki zarurat hai.
6: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
1: نیشنل ڈیتھ ہیلپ لائن سے رابطہ کرنے کے تین طریقے ہیں. لوگ 1-800-007-007 پر کال کر سکتے ہیں یا ndh.org.au پر جا سکتے ہیں یا ویب سائٹ پر لائیو چیٹ سروس استعمال کر سکتے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو انگریزی کے علاوہ کوئی دوسری زبان بولتے ہیں, نیشنل ڈیتھ ہیلپ لائن کے پاس ترجمان کی مدد کرنے کا بندوبست موجود ہے. محترمہ اسٹاف کا کہنا ہے کہ مدد کی طلب زیادہ ہے, اس لیے کال کرنے والوں کو مصروف اوقات میں انتظار کرنا پڑ سکتا ہے. جنہیں طویل انتظار کا سامنا کرنا پڑے کہ وہ دوبارہ کوشش کریں یا اگر ممکن ہو لائیو چیٹس جیسے رابطے کا دوسرا آپشن استعمال کریں. رہائشیوں کی بھی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ دیگر مفت مدد چیک کریں جو کمیونٹی تنظیموں کے ذریعے دستیاب ہو سکتی ہیں, بشمول سالویشن آرمی کی منی کیئر سروس, کچھ اینگلی کیئر فائنینشیل کاؤنسلنگ سروسز, کمیونٹی

0: Hits from Home.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: एकड़ पर फैली इस मवेशी मंडी में मुल्क भर से मुख्तलिफ नस्लों के जानवर लाए गए हैं, जिनमें सिब्बी, ब्राह्मण, साइवाल और ऑस्ट्रेलियन नस्ल के बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। इमदाद अली सिब्बी बलूचिस्तान से 80 जानवर लेकर मवेशी मंडी पहुंचे हैं। वो कहते हैं, फ्यूल प्राइसेस बढ़ने की वजह से हमारे ट्रांसपोर्ट के अखराजात भी बढ़ गए हैं, जिसका बराह रास्त असर जानवरों की कीमतों पर भी पड़ा है।
3: सिब्बी से तकरीबन 80 जानवर लेकर आये, हर साल यहाँ जानवर लेकर आता हूँ, तो इस साल भी हम लेकर आए, लेकिन इस साल थोड़ा सा महंगा ही, अगर देखें तो जैसे पेट्रोल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट में हमने कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं। अच्छा, इंतजाम तो मंडी के ये है कि हमें पानी फ्री मिलता है, तो थोड़ा ये बेनिफिट अच्छा है हमें, और जनरल ब्लॉक के ये कि पैसे में नहीं देने होते हैं, तो ये थोड़ा सा हमें ये कि थोड़ा सा कोऑपरेट करते हैं इंतजामिया वाले, तो चलो चल जाते हैं। बाकी रही बात कारोबार की, तो देखें यहाँ व्यापारी आते, खरीदार आते हैं, वो जानवर ज्यादातर सिब्बी की पसंद करते हैं, साहिवाल की, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, पसंद होती है, लेकिन वो सब कहते हैं कि रेट ज्यादा है। भाई रेट ज्यादा है, आप सब जानते हैं, देखिए जो इंतजामिया कोऑपरेट कर रही है, वो चारा जो है जितना ला सकते हम लेकर आए, बाकी यहाँ से हमें खरीदना होता है, पानी फ्री दे रहे हैं, लाइट वगैरह है, तो चलो समझ में आता है। अच्छा, अगर हम बात करें तो देखिए खरीदार जो है ना, वो मुख्तलिफ किस्म के आते हैं, उनको सिब्बी के जानवर भी चाहिए होते हैं, उनको फिर वो साहिवाल नस्ल के चाहिए होते हैं, देसी चाहिए होते हैं, तो हमारे पास जो सिब्बी के जानवर है वो सबसे ज्यादा जो है वो पसंद किए जाते हैं, शहर कैद के लोग जो पसंद करते हैं, उनकी हाइट कुछ ज्यादा होती है।
2: मंडी का रुख करने वाले एक शहरी इमरान ने हमें बताया कि वो 3

0: A new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: जानवर ले लूंगा, भाव तो मेरा तो अभी तो जारी है, बार्गेनिंग करने में लगा हूँ। उम्मीद है कि है ना मान जाएंगे, क्योंकि इसी मंडी से हमारे मोहल्ले के भी काफी है ना एरिया के लोग काफी है ना जानवर लेकर आए और मुनासिब दामों पे लेकर आए। मैंने जब ही इस मंडी का रुख किया है।
4: एक और शहरी असजिद भी शिकवा करते हैं कि जानवरों की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी है।
5: मंडी में आए हुए हैं जानवर देखने के लिए और बड़ा रश लगा हुआ है। हमेशा की तरह जानवर अब भी महंगा है भाई। वो दौर पुराने होते थे जब सस्ते जानवर मिल जाते थे, अब तो हाथ रखो जानवर तो 8 लाख 9 लाख। कोशिश कर रहे हैं, काफी देर से तो घूम रहे हैं लेकिन अपने मतलब का जानवर नहीं मिल रहा। कुछ एक आध जानवर मिले अपने मतलब के लेकिन उस हिसाब से वो चीज नहीं है। अब हमें चाहिए जानवर जो 8 लाख का कह रहे हैं, हमें वो 4 लाख में चाहिए। अब कोशिश करते करते पूरी मंडी ही घूम गए। बाकी इंतजाम बड़े अच्छे किए हैं भाई। पुराना दौर याद आता है 2010-11 वाला, जानवर पे हाथ रखते थे भाई लाख रुपए में आपको एक अच्छा सा 7-8 मन का जानवर मिल जाता था और जब लेके आते तो बच्चे भी खुश घर वाले भी खुश। अब तो बस देख घूमते रहो आपको 1 मन का 2 मन का जानवर भी जो है ना वो लाखों रुपए में मिलेगा, जो आपकी आप हैरान रह जाएंगे कि यार ये जानवर। अब लगे हुए ढूंढ रहे क्या करें, अगर मिलता है ठीक है, नहीं तो अब आएंगे। अभी भी खैर टाइम है, खैर अब घूम रहे हैं, दुआ करें मिल जाए।
4: दूसरी जाने तर्जुमान मवेशी मंडी साकिब आलम ने बताया कि रवां वर्ष 2 लाख से ज्यादा जानवरों की मंडी में आमद मुतवक्के है, जबकि साथ ही उन्होंने कहा कि शहरियों के लिए मंडी में पार्किंग बैंकिंग समेत दीगर सहूलियात मुयसर की गई है।
6: इस साल मुमकिन तौर पे जानवरों की आमद जो है वो 2 लाख से ज्यादा मुतवक्का है। 1.25 लाख के करीब जानवर इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद है। सिक्योरिटी के हमने मौसर इंतजाम किए हैं। शहरियों की सहूलत की अगर बात की जाए तो इनको महफूज पार्किंग प्रोवाइड की जा रही है। इसी तरह से यहाँ पे फूड स्ट्रीट कायम की गई है। इस मवेशी मंडी में बैंकिंग की सहूलत भी मौजूद है, अगर कोई कैश लेके नहीं आना चाहता है तो यहाँ पे वो डिजिटल बैंकिंग के जरिए भी जो है अदायगियां कर सकता है।
4: साकिब आलम के मुताबिक मुल्क भर से आने वाले जानवरों की मंडी में आमद से कबल उनका मेडिकल चेकअप किया जाता है, जिसके बाद ही जानवरों को मंडी में आने की इजाजत दी जाती है।
6: साथ ही साथ अगर आप जानवरों के हवाले से बात करते हैं तो कोई भी जानवर जो है वो बगैर वेटनरी डॉक्टर्स की चेकिंग के बगैर यहाँ पर नहीं आ सकता। जो हमारा मार्शलिंग एरिया है वहाँ पर वेटनरी की टीम मौजूद है जो कि जानवरों को चेक करती है, उसके बाद ही जानवर जो है वो मवेशी मंडी के अंदर आते हैं।
4: तर्जुमान के मुताबिक व्यापारियों को उनके जानवरों के लिए मुफ्त पानी और साथ ही मुनासिब कीमत में चारा भी फराहम किया जाता है। SBS उर्दू के लिए ये रिपोर्ट पाकिस्तान से एहसान खान ने पेश की।
7: लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए, फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए। यकीनी बनाइए कि आपको सिर्फ वो खबरें ना मिलें जो सोशल मीडिया फीड आप तक पहुंचाना चाहता है, बल्कि आपको खबरों के हर जाविये का इल्म हो। हमारी तमाम खबरें और कहानियां जानने के लिए आज ही अपने वेब ब्राउजर पर SBS उर्दू की वेबसाइट को बुकमार्क करें sbs.com.au/urdu।
8: जी दोस्तों, प्रोग्राम की आखिरी घड़ियां आ पहुंची हैं, चलते चलते आपको अहम खबरों की सुर्खियाँ दोबारा सुनाते हैं। इसराइली हुकाम की जानिब से रवां हफ्ते हिरासत में लिए गए सैकड़ों इमदादी कारकुनों जिनमें ऑस्ट्रेलियन शहरी भी शामिल थे उनको रिहा कर दिया गया है। गजा इमदादी काफिले ग्लोबल सुमूत फ्लोटिला में शामिल कारकुनों के साथ सलूक पर आलमी सतह पर गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है और कई ममालिक ने अपने खदशात के इजहार के लिए इसराइली सफीरों को तलब किया है। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का अलबत्ता कहना है कि उन्होंने हिदायत जारी कर दी है कि कारकुनों को जल्द अज जल्द मुल्क बदर कर दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया में इसराइल के सफीर ने गजा इमदादी काफिले के कारकुनों के साथ इसराइल के रवैये का दिफा किया है, ताहम उन्होंने तस्लीम किया है कि कौमी सलामती के वजीर उत्मार बिन गोवेर का रवैया नामुनासिब था। इतलात हैं कि शिद्दत पसंद तंजीम दाइश से मुंसलिक मजीद ऑस्ट्रेलवी खवातीन और बच्चों ने शाम छोड़ दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ग्रोह अलरूज पनाह गुजीन कैंप से रवाना हुआ है और अब दारुलहुकूमत दमिश्क की जानिब बढ़ रहा है, जहां से उन्हें ऑस्ट्रेलिया वापस लाया जाएगा। इससे कबल मई के आगाज़ में 4 खवातीन और 9 बच्चे तकरीबन 2 हफ्ते दमिश्क में गुजारने के बाद सिडनी और मेलबोर्न पहुँचे थे। ऑस्ट्रेलियन इंडिजिनस डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि खन्नाक के हालिया फैलाव को ना सिर्फ बीमारी का कंट्रोल का मसला बल्कि मसावात के मसले के

0: A new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: पूरा लंबा लगता थोनू आप देहात से लगता फिर तुसी कुछ भी कर सकते तो मेरा मोटिव मेन यही हुंदा कि आपां छेती उठिए आपदियां टास्क जिहड़ियां जॉब तो इलावा ने क्योंकि वो तो आपां रोजी रोटी लिए करते उस तो इलावा जिहड़ियां भी चीजा हैगियां ने उहनां नूं आपां किन्ना टाइम दे सकते हैं वीकेंड्स ते किन्ना टाइम दे सकते हैं अगेन बहुत हरेक दियां कमिटमेंट्स डिफरेंट हुंदियां ने फैमिली कमिटमेंट्स हुंदियां ने बच्चियां दियां कमिटमेंट्स हुंदियां ने पर जिन्ना भी तुसी कढ सकदे हो उस तरीके नालों मैनेज हो जाता टाइम बजुर्ग मिले मैनू अपनी ही कम्यूनिटी दे ते उन्हां दी जॉब उन्हां दी छत ते कुछ कुछ फॉल्ट सीगा ते उन्होंने एसजीएस नूं कॉल किया उन्होंने बड़े प्यार नाल मैनू पुछा बिकॉज मैं सत श्री अकाल बुलाई एकदम तां उन्हां नूं पहला तां शॉक पंजाबी है ना क्योंकि साडी जिहड़ी यूनिफॉर्म है इदां लगदी है वी जिवें तां मैनू उन्होंने बड़े प्यार नाल उन्होंने पुछा दा कुड़ी तैनूं पैसे मिलदे आ इस कम दे वो बड़ा फन मैनू होया उन्होंने बड़े प्यार नाल फिर समझाया वी नहीं बाबा जी पैसे नहीं मिलदे सेवा असीं मतलब जिवें मान लो थोनूं हुण हैल्प दी लोड़ सी तुसीं बुलाई थोड़ी इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत बाद जाणा असीं आए आ असैस करांगे थोड़ी हैल्प करके जावांगे थोनूं इन्ना क करके जावांगे कि तुसीं अंदर बैठ सकदे सो एक बड़ा फनी इंसीडेंट सीगा मैनूं अज भी याद है कि उन्हां ने जिस तरीके नाल जिस लैसन नाल मैनूं पुछा भी क्यों कर रही है ते इदां इंस्पिरेशन मैनूं मैनूं खुद नूं मैनूं इन्नी पता जी भी स्पैशली एससीएस वास्ते कित्थों आई है पर मेरा माइंडसैट हमेशा जिवें मैं थोनूं दस्सिया भी मैं लभदी रहिंदी आं भी जे मेरे कोल खाली टाइम जिन्ना क भी बचिया भी मैं की करा उहदे च मैनूं याद है भी मैं जदों जॉइन कीता सी मैं अपने फ्रेंड्स नाल रहिंदी सी उह भाजी करदे सीगे वॉलंटियर एससीएस लई डिफरेंट यूनिट लई उह इक पता लग गया कि इह रोल हैगा इदां दा एग्जिस्ट करदा ते चलो उही गल अगेन जिवें मैं थोनूं दस्सिया भी मैं सर्च कीता एंटर कीता ते मैं हुण डिफरेंट यूनिट च आं तां उह चीज़ मैनूं लगदा हुंदा कि आपां जरूरी नहीं है SCST है पर होर भी जिथे भी थोनों मौका मिलता है उथे भी थोनों टाइम लगता है जिहड़ी थोनों चीज मैनू यह हुंदा कि जिथे आपां जिन्ना टाइम दे सकीए उन्ना बेस्ट है
4: स्वय सेवा ऑस्ट्रेलिया दे समाजिक मूलां दा एक महत्वपूर्ण हिस्सा ताज़ा अंकड़े दर्शाते ने कि 2005 विच ऑस्ट्रेलिया विच 9.5 मिलियन लोगों ने वलंटियर किया वलंटियरिंग ऑस्ट्रेलिया दे सीईओ मार्क पीयर्स ने दस्या कि हाल ही दे समय विच वलंटियरां दी वधदी लोड़ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ
5: What the latest report really highlights is the strength of volunteering in Australia. Even with real constraints such as the rising living costs, time pressures, and a whole lot of structural barriers, people are still stepping forward. In fact, volunteers are contributing more hours, which speaks volumes about their commitment to community and to supporting people in need. And that's really, really encouraging. But of course, resilience within the volunteering ecosystem has its limits. This increase, and it's important to understand in effort, is also a signal of growing demand across the communities.
4: ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਪਾ ਸਕਦਾ
5: It's an opportunity for us to think about how we can be involved in our communities. And there are lots of easy ways to do it. Go onto platforms such as Go Volunteer or Seek Volunteer, and you'll find a raft of opportunities on there in your area and within your areas of interest. Additionally, getting in contact with your state and territory volunteering peak bodies, give them a call, and they'll be able to provide you with lots and lots of opportunities and steps that you can take to get involved in volunteering in ways that make sense to you.
4: ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਜੀ 0439-799-7670-4347997-67 ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ SBS ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਨਾ ਕਾਲਰਾ

0: जी हाँ दोस्तों, अज तुहानू जिदां पता है कि असी कॉन्टेस्ट रन कर रहे हैं, जिहदे विच मैं सवाल पूछा सी कि आने वाली फिल्म चढ़दी कला विच जिहड़े चाइल्ड एक्टर्स ने उन्हां दा की नाम है। तो सानू जवाब बहुत सारे आए ने, पर एक मैं हिंट दे दिंदी हां, उन्हां सारे जवाबां विच मेन हीरो हीरोइन की गल हो रही है। वह मेरा सवाल नहीं सी जी, मैं तुहानू पूछ रही हाँ कि चाइल्ड एक्टर कौन है, यानी कि जो दो छोटे बच्चे ने उस फिल्म विच, उस फिल्म का जो प्रोमो देखोगे तो तुहानू दो छोटे बच्चे भी दिखणगे, उन्हां बच्चों का की नाम है। यह है जी मेरा सवाल, तो जो सही जवाब देगा उन्होंने मिलेंगे जी फ्री पासिस इस मूवी के। यह मूवी रिलीज़ होएगी अगले हफ्ते, तो सही जवाब तुम लिख के भेज सकते हो SMS राही 04397997667 उत्ते, या फिर ईमेल कर सकते हो जी sbs.punjabi.program उत्ते। सवाल है जी चाइल्ड एक्टर्स के नाम चढ़दी कला फिल्म विच। जदों तक तुसी सोच रहे हो, एक छोटा जिहा ब्रेक लैके असी हुणे वापस आए।
1: There's a reason some things just taste better. At Sharma's Kitchen, we don't cut corners. We don't add what doesn't belong. Just real milk, traditional methods, and products made the way they should be. From paneer to yogurt, ghee to khoya, every batch is crafted with care, right here in Australia. You'll taste it, you'll trust it. Sharma's Kitchen. Yes, there is a difference.
2: SBS audio app ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਐਪ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਤੋਂ SBS audio app ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। SBS ਨਿਊਜ਼ ਇਨ ਡੈਪਥ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਐਪ ਉੱਤੇ ਸੁਣੋ। SBS ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੀ SBS ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर. शुक्रवार 22 मई 2026 का दिन और SBS के हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आपको अनीता बरार का नमस्कार. सबसे पहले कि आज हम जिस भूमि से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं उसके पारंपरिक उत्तराधिकारियों को स्वीकार करते हैं. SBS हिंदी कुलीन राष्ट्र के वारंजरी लोगों, उनके अतीत और वर्तमान के बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है. हम उन सभी मूल निवासियों और टॉरस स्ट्रेट आइलैंड के पारंपरिक उत्तराधिकारियों का भी सम्मान करते हैं जिनकी भूमि से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं. श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम भारत की रिपोर्ट के अलावा बात कर रहे हैं फेडरल बजट में हुए माइग्रेशन से जुड़े बदलावों के बारे में और साथ ही बात होगी कोहिनूर हीरे की. जी हाँ, कोहिनूर हीरा, इसके बारे में आप क्या कुछ जानते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँचा? क्यों ना आप हमें बताएं कि ये ब्रिटेन के पास कैसे पहुँचा और भारत में ये कहाँ से था. जो भी आपके पास इसके बारे में जानकारी है मुझे अवश्य बताएं 0439-799-767 पर. और अभी पहले न्यूज फ्लैश. नमस्कार, शुक्रवार 22 मई के लिए यह है न्यूज फ्लैश और मैं हूं अनीता बरार. एक ऑस्ट्रेलियाई एक्टिविस्ट जो गाजा जाने वाले एक फ्लोटिला का हिस्सा थी, उनका कहना है कि इजरायली अधिकारियों ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया. नेवे ओकॉनर उन 11 ऑस्ट्रेलियाई लोगों में से एक थीं जिन्हें इजरायली सेना ने मंगलवार को पकड़ा था और अब उन्हें तुर्की ले जाया गया है. पेरू में इंका ट्रेल पर हाइकिंग करते समय एक ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति की माचू पिचू में गिरने से मृत्यु हो गई. 53 वर्ष का ये व्यक्ति विक्टोरिया पुलिस का सार्जेंट बताया जा रहा है. विपक्ष के नेता एंगस टेलर ने सेनेटर जसिंथा नामपिजिंपा प्राइस का साथ दिया है. सेनेटर जसिंथा ने उस पॉडकास्टर से दूरी बना ली है जिसने कहा था कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार को भारत, चीन, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से आने वाले लाखों माइग्रेंट्स को रोकना चाहिए. शो में आने के दौरान प्राइस ने पॉडकास्ट होस्ट की उन बातों का विरोध नहीं किया जिन्हें उन्होंने भारत, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से माइग्रेंट ग्रुप्स के आने के तौर पर बताया था. एक बयान में प्राइस ने कहा है कि वो पॉडकास्ट होस्ट की बातों से सहमत नहीं है और टेलर का कहना है कि इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए. मेलबर्न में रात में होने वाले आगजनी हमलों को लेकर विक्टोरियन लिबरल एमपी की राज्य के अटॉर्नी जनरल से बहस हो गई है. हाल ही में हुए इस अपराध में 3 लोग रिचमंड में एक लग्जरी कार डीलरशिप में घुस गए और उसे आग लगा दी जिसमें अंदर मौजूद 2 क्लीनर बिना किसी चोट के बच निकले. संसदीय सुनवाई के दौरान लिबरल सांसद रिचर्ड री ओडर्न ने अटॉर्नी जनरल सोनिया किलकेनी से बहस करते हुए कहा कि विक्टोरिया के बेल कानून फेल हैं. ग्लोबल वैक्सीन कोएलिशन के एक अधिकारी का कहना है कि कांगो में इबोला फैलने के अब तक के पता चले मामलों की बस ये एक शुरुआत ही है. पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में ये इबोला के दुर्लभ बुन डी बुजो स्ट्रेन से जुड़ा है जिसके लिए अभी कोई अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अब तक इबोला के कम से कम 600 संदिग्ध मामले और 139 संदिग्ध मौतें दर्ज की गई हैं. आईएस ग्रुप से जुड़े ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं और बच्चों का दूसरा ग्रुप सीरिया के एक रिफ्यूजी कैंप अलरोस कैंप से निकला है और लगता है कि वे ऑस्ट्रेलिया लौटने वाली फ्लाइट्स के लिए राजधानी दमिश्क की ओर जा रहे हैं. समय के बारे में अभी स्पष्ट नहीं है. आईएस से जुड़ी 4 महिलाओं और 9 बच्चों का एक ग्रुप मई की शुरुआत में उसी रिफ्यूजी कैंप से निकलकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था. और एनडीटीवी से मिले समाचार के अनुसार भारत भोपाल के बहुचर्चित त्विशा शर्मा की मौत के मामले में उसकी सास गिरिबाला सिंह पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं. पुलिस ने उन्हें आखिरी नोटिस जारी किया है और पूछताछ के लिए बुलाया है. उधर त्विशा के पिता नवीनीत शर्मा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर न्याय की मांग की है। पुलिस को यह भी जांच में पता चला है कि सास ने त्विशा की मृत्यु के दिन लगभग 46 फोन कॉल्स की थीं। अन्य समाचारों और समुदाय के समाचारों के लिए आप हमारी फेसबुक और हमारे वेब पेज sbs.com.au/hindi से जुड़े रहें। न्यूज फ्लैश समाप्त हुआ। न्यूज़ फ्लैश के बाद आइए अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के हालिया फेडरल बजट में हुए माइग्रेशन से जुड़े बदलावों की। पीआर की राह देखते हुए लोगों के लिए कई सवाल तो उठ खड़े हुए हैं, यानी कि छात्रों और स्किल्ड माइग्रेंट्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑनशोर ऑफशोर आवेदकों के जो अवसर हैं, वर्क वीज़ा के जो रुझान हैं और पॉइंट टेस्ट, तो इन सब में जो बदलाव हो सकते हैं उसी पर आइए जानते हैं इन सभी बातों पर नबील हसन के साथ इस अगली रिपोर्ट में।
2: एक 185,000 का परमानेंट माइग्रेशन कैप, स्टूडेंट वीजा स्क्रूटनी के लिए लगभग $20 मिलियन का प्रावधान और ऑनशोर एप्लीकेंट्स को प्रायोरिटी। 12 मई को आए फेडरल बजट में माइग्रेशन को लेकर किए गए ये ऐलान ऑस्ट्रेलिया में पीआर की राह देख रहे हजारों एस्पिरेंट्स के लिए क्या मायने रखते हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और मैं हूं नबील हसन। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन माइग्रेशन चेंजेस का असर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और स्किल्ड माइग्रेंट्स पर किस तरह पड़ सकता है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आकर शाह, जो एक सॉलिसिटर हैं और इमिग्रेशन लॉ में स्पेशलाइज करते हैं।
3: थैंक यू नबील।
2: आकर्ष वर्ष 2018 में एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में ऑस्ट्रेलिया आए थे और अब माइग्रेशन लॉ के क्षेत्र में काम करते हुए इस सिस्टम को करीब से समझते हैं। ये रिपोर्ट दो भागों में प्रस्तुत की जा रही है, आइए सुनते हैं इसका पहला भाग। आकर्ष जी, सबसे पहले 12 मई को जो फेडरल बजट पेश किया गया है उसमें माइग्रेशन को लेकर कौन कौन से अहम ऐलान रहे और ओवरऑल आप इन रिफॉर्म्स को किस नजरिए से देखते हैं?
3: ओवरऑल मैं ये रिफॉर्म्स को काफी पॉजिटिवली देखता हूँ। उसका रीज़न यह है कि अगर आप ओवरऑल ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन सिस्टम का लास्ट 5 से 10 साल का परफॉर्मेंस देखो, अगर तो ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम ये हुआ है कि बहुत सारे हाईली एडुकेटेड लोग हैं बट नॉट नेसेसरीली कि वो सारे हाईली स्किल्ड है। तो ऑस्ट्रेलिया का फोकस अब ये बन रहा है कि स्किल शॉर्टेज जो है उसको अच्छी तरीके से हैंडल किया जाए। और स्किल शॉर्टेज को हैंडल करने के लिए अभी जो उन्होंने जो रिफॉर्म्स लाए हैं कि अगर एक एग्जांपल दूं, लास्ट 10 साल में मान लो 10,000 सिविल इंजीनियर को इनविटेशन दिया होगा, पर वो 10,000 इंजीनियरों में से सिर्फ 1,000 लोग ही अपने फील्ड में काम कर पा रहे हैं। तो इस चीज को कैसे ब्रिज किया जाए उसको ध्यान में रखते हुए जो रिफॉर्म्स आए हैं वो कि 70% ऑनशोर एप्लीकेंट्स के लिए रिजर्वेशन रखा गया है, एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप वीजा को बढ़ाया गया है, जो लूपहोल्स मिसयूज होते हैं स्टूडेंट वीजा के या फिर जो परमानेंट टेम्पररीनेस है कि लोग एक वीजा से दूसरे वीजा पे चले जाते हुए उसको कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। तो ये मेजर हाइलाइट्स है और मुझे लग रहा है कि ये जो अनाउंसमेंट्स हुई है वो ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन को बेटर करने के लिए एक पहल है।
2: अच्छा, ऑनशोर एप्लीकेंट्स को प्रायोरिटी दिए जाने की बात सामने आई है, क्या ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए इसे पीआर के लिहाज से एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है?
3: 100%

0: बेटर होंगे, बट शायद इतने स्तर पर बेटर नहीं होंगे। उसका रीजन यह है कि पिछले 10 सालों में, या उड से 5 सालों में, कोविड के बाद जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हैं पिछले 5 सालों में, वो भी अब तक के रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाईएस्ट नंबर्स पे है। तो ऑनशोर एप्लीकेंट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, बट साथ साथ में कंपटीशन भी उतना ही है। और ज्यादातर अगर हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, या फिर इवन साउथ ईस्ट जैसे फिलीपींस, इंडोनेशिया, उसकी बात करें, तो वहां से पिछले 5 से 7 सालों में बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हैं। तो डेफिनेटली स्कोप बढ़ेगा, बट उसके साथ साथ कंपटीशन भी उतनी ही है।
1: जी अच्छा, स्टूडेंट वीज़ा स्क्रूटिनी की बात करें तो उसके लिए लगभग 19.8 मिलियन डॉलर्स एलोकेट किए गए हैं। क्या आप इसे अनलॉफुल या नॉन जेन्युइन एप्लीकेशंस को नियंत्रित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानते हैं, और क्या इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है?
0: इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट हो सकता है, और अगर आप पिछले 1-1.5-2 साल में जितने भी चेंजेस हुए, अगर उसको हम ध्यान में रखें, तो प्रैक्टिकल इसका जो भी इफेक्ट है वो ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो मास्टर्स करने के लिए आते हैं और फिर डिप्लोमा या कोई छोटे कोर्सेज में ट्रांसफर कर लेते हैं, उनका वीजा कैंसिल हो रहा है। बहुत सारे लोगों को बॉर्डर से वापस घर भेजा जा रहा है। बहुत सारे जो अभी बीच में फिलहाल ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर एक स्क्रूटिनी बिठाई थी, जहाँ पे हाईवे पेट्रोल ट्रक ड्राइवर्स को पकड़ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग ओवर द अलाउंस, जो 48 घंटे का फोर्टनाइटली अलाउंस है, उसके ऊपर काम कर रहे थे। तो अब जब स्टूडेंट वीजा सबमिट होता है, तो हमें भी पता है कि बहुत सारी बार काफी डॉजी प्रोवाइडर्स, सम ऑफशोर एंड सम इवन ऑनशोर, वो लोग कोई भी फालतू से डॉक्यूमेंट्स एंड एंड इंफॉर्मेशन दे देते हैं सारा, जैसे कि वन सोल्यूशन फिट्स ऑल। कोई MBA करने आया हो, चाहे कोई मास्टर्स इन IT करने आया हो, सबको बोलेंगे कि आप एक काम करो, कोर्स चेंज करके आप कोई डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट 2 या 3 ले लो, फिर आपका PR हम इजी कर देंगे। और इन लोगों को फिर कहीं ना कहीं स्टूडेंट वीजा एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ती है। अब इशू ये आ रहा था कि अगर स्टूडेंट वीजा सही से स्क्रूटिनी और सही से उसका स्टार्टिंग फेज पे ही अगर असेसमेंट ना हो, तो और रिफ्यूजल आए, तो फिर वो अपील में जाता है। और कई कहीं लोग तो अपील के प्रोसेस में जाते ही इसलिए कि टाइम मिल पाए। तो अगर जो ये बजट अलोकेट किया है उसका अगर सही से इस्तेमाल हो, कि जो अच्छे स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशंस हैं उनको बुरे स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशंस के सामने अच्छे से असेस करके फिर डिसीजन दिया जाए, तो क्या दो फायदे होंगे। एक, जो अननेसेसरी डॉजी एप्लीकेशंस है जो सिर्फ और सिर्फ टाइम बढ़ाने के लिए वीजा डाल रहे हैं, वो कम हो जाएंगे। और जो अच्छे एप्लीकेशंस हैं जिनको अभी के लिए फिलहाल ऐसे ही स्क्रूटिनी फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि सब कुछ सही है बट फिर भी वीजा रिफ्यूज हो रहा है, वो शायद उनका वीजा रिफ्यूज नहीं होगा। तो इनिशियल लेवल पे अगर ये बजट का एलोकेशन हो कि ज्यादा केस ऑफिसर्स को बढ़ाया जाए, या फिर केस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे केसेस को असेस करना है एंड बाइफर्केशन कैसे करना है, तो डेफिनेटली ये बजट का सही इस्तेमाल होगा, तो 100% इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट दिखेगा।
1: अगर हम ऑफशोर स्किल माइग्रेशन एलोकेशंस की बात करें तो किन सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज को आगे प्रायोरिटी मिलने की संभावना दिखती है?
0: अगर ऑफशोर में से कोई ट्राई कर रहा है टू गेट परमानेंट रेजिडेंसी अंडर स्किल्ड इंडिपेंडेंट स्ट्रीम, तो हेल्थ सेक्टर, फिर इंजीनियरिंग, फिर एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन, इवन ICT। लोगों को लगता है कि IT अब खत्म हो गया, बट ऐसा नहीं है। हमारे इस साल में कम से कम 6 या 7 IT क्लाइंट्स को इन्विटेशन आया है, उसमें से 3 या 4 ऑफशोर भी थे। अब पर ऑफशोर में इस बार अगर देखा जाए, तो उन्होंने क्लियरली ऐसा बोला हुआ है कि जो 55,000, 55,000 जो सीट्स है ऑफशोर के लिए जो उन्होंने एलोकेट की है, उसमें वो लोग प्रिफर करेंगे हाईली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस पीपल। तो मुझे लग रहा है कि ऑफशोर में से उन लोगों को, उनको ऐसा चाहिए जिनके पास सीनियर लेवल का एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने अपना करियर में थोड़ा बहुत कुछ प्रूव ऑलरेडी कर लिया हो और डिसेंट सैलरी पे हो। वैसे एप्लीकेशन जो, या वैसे एप्लीकेंट जो होंगे, उनको ऑफशोर में से शायद प्रायोरिटी मिलेगी, रेदर देन एंट्री लेवल जो लोग हैं, क्योंकि उनको अभी उनका खुद का ही करियर प्रोग्रेशन प्रूव करना बाकी है।
1: SBS हिंदी की इस विशेष रिपोर्ट में हम हालिया माइग्रेशन चेंजेस और उनके अंतर्राष्ट्रीय छात्रों तथा स्किल माइग्रेंट्स पर पड़ने वाले संभावित असर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिपोर्ट 2 भागों में प्रस्तुत की जा रही है। इसके दूसरे भाग के लिए बने रहिए SBS हिंदी पर। इस ऑडियो पॉडकास्ट में व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं, SBS ना तो इनसे सहमत है और ना ही असहमत।
2: तो श्रोताओं, आप ये रिपोर्ट सुन रहे थे।

0: पहला भाग आपने सुना और जैसा कि नवीन ने बताया कि अगला भाग हम आपको अभी सुनवाते हैं, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। वैसे इतनी जो अभी तक आपने बातचीत सुनी उसमें क्या आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला है? क्या आप चिंतित हैं किसी चीज़ को लेकर? अवश्य हमसे संपर्क कीजिए और हमें अपने संदेश भी भेजिए 04397997667 पर। तो इस रिपोर्ट का अगला भाग सुनते हैं इस अंतराल के बाद।
1: SBS फूड के साथ पूरी दुनिया को अपनी रसोई में ले आइए। SBS फूड पर 7000 से भी ज्यादा रेसिपी देखें, साथ ही हाउ टू लेख, वीडियो निर्देश और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/food पर जाएं। अच्छे शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। SBS लर्न में शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित ऑनलाइन संसाधन मौजूद हैं। sbs.com.au/learn पर जाएं। जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। sbs.com.au/guide पर जाएं। आपके लिए लेकर आए हैं पुरस्कार विजेता नाटक, अंतर्राष्ट्रीय खेल और वृत्त चित्रों की दुनिया। SBS विविधताओं का एक संसार। देखिए SBS अपनी टीवी पर चैनल 30 और SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर।
2: इनसाइट SBS का पुरस्कृत करंट अफेयर्स, ये उन विषयों पर चर्चा करने से नहीं डरता जिन पर अन्य लोग बात नहीं करना चाहेंगे। हर मंगलवार 8:30 बजे SBS और ऑन डिमांड पर। SBS ऑडियो ऐप आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है। SBS ऑडियो ऐप एकदम मुफ्त है, इसे ऐप स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड करें।
3: Hi, I'm Janice Peterson from SBS World News, and I'm here to help you improve your English pronunciation. This short lesson is only about 5 minutes, so you can easily fit it into your day, perhaps on your lunch break.
4: SBS Learn English helps Australians speak, understand, and connect.
0: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बराल। श्रोताओं, इस अंतराल से पहले हम सुन रहे थे एक रिपोर्ट कि फेडरल बजट से जो माइग्रेशन से जुड़े बदलाव हैं उनका क्या असर हुआ है। तो आइए जानते हैं कुछ और बातें नबील हसन की इस रिपोर्ट के दूसरे भाग में।
5: SBS हिंदी पर मैं हूं नबील हसन। आप सुन रहे हैं हमारी विशेष रिपोर्ट का दूसरा भाग, जिसमें हम फेडरल बजट में घोषित माइग्रेशन रिफॉर्म्स और ऑस्ट्रेलिया में पीआर की राह देख रहे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों तथा स्किल माइग्रेंट्स पर उनके संभावित असर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं आकर्ष शाह के साथ, जो इमिग्रेशन लॉ में स्पेशलाइज करने वाले एक सॉलिसिटर हैं। आकर्ष जी, आज भी कई लोग जॉब स्पॉन्सरशिप को पीआर तक पहुंचने के एक पाथवे के रूप में देखते हैं, क्या ये क्षेत्र अभी भी खुला हुआ है और क्या इसमें अवसर मौजूद हैं?
6: मेरे हिसाब से वो फील्ड अभी भी खुली है और कोई ऐसा मैंने देखने को नहीं मिला है मुझे कि स्पॉन्सरशिप्स कम हो गई है या नहीं मिल रही है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि कोई भी प्लेसेस या कोई भी स्पॉट्स कम नहीं हुए हैं, सिर्फ कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। अब 10 साल पहले ऑस्ट्रेलिया इतना शायद पॉपुलर नहीं था, और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कनाडा, यूएस, बाकी बहुत सारे डेस्टिनेशंस थे, तो जो लोग थे जिनको माइग्रेट करना था उनका नंबर्स डिवाइड हो जाता था। 10 साल पहले मान लो 1000 स्पॉन्सरशिप जॉब्स होंगी तो उसके लिए अप्लाई करने वाले 5000 होंगे, तो 5 में से एक को मिल जाता था। अभी 1000 स्पॉन्सरशिप जॉब्स अभी भी है ही शायद, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, बट अप्लाई करने वाले 15000 लोग हैं, तो 1000 है और 15000 अप्लाई करेंगे तो 14000 को नहीं मिलेगा। तो ऑफकोर्स इन द मार्केट एंड एवरीवेयर ऐसा ही एक माहौल पैदा होगा कि बहुत टफ हो गया है, नहीं हो रहा है। बट जिनके पास जेन्युइनली स्किल्स है, अभी जैसे अक्टूबर में ही एक मेरी दोस्त जो बिग फोर में काम करती थी इंडिया में, उसको सीधा जॉब आफ्टर तीन साल का एक्सपीरियंस, उसको सीधा स्पॉन्सरशिप मिलकर वो यहाँ पे मेलबर्न में आ गई ऑन द 482 वीजा। और ऐसा एक नहीं, काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट हाँ सबके लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सबके लिए पॉसिबल होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता और टेंशन ही नहीं होती कोई।
5: तो जब रिक्रूटर्स किसी रोल

0: के लिए जॉब एडवर्टाइजमेंट्स जारी करते हैं, क्या उन्हें बड़ी संख्या में एप्लीकेशंस मिलती हैं और ऐसे में कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करना कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है?
1: जैसे हम बहुत सारे रिक्रूटर्स के साथ भी काम करते हैं, हम बहुत सारे एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप वीज़ा हैंडल करते हैं, तो जब हम स्पॉन्सरशिप के लिए जॉब एडवर्टीजमेंट पोस्ट करते हैं ना, तो मान लो हमने शेफ़ की जॉब एडवर्टीजमेंट पोस्ट करी है ना, उसमें ऑफशोर एप्लीकेशंस 100 100, 150 150, 200 200 आती है, उसमें से 70% लोग का मोस्ट रिसेंट जॉब होता है आईटी फील्ड, या फिर कुछ कुछ ही अलग सा, मतलब उन लोगों के पास कोई शेफ का एक्सपीरियंस नहीं है, बट बस जॉब देखी, ऑस्ट्रेलिया में जॉब है तो अप्लाई कर दो। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो जेन्यून एप्लीकेंट्स है उनका प्रोफाइल रिक्रूटर्स तक, या फिर जो लोग डिसाइड कर रहे हैं उन तक पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि जो रिक्रूटर्स है जो हम जिनके साथ काम करते हैं वो बोलते हैं कि हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारी कंट्री से इतने सारे एप्लीकेशंस आते हैं और वो लोग देखते ही नहीं है कि जॉब आईटी की है, आप शेफ हो या आप शेफ हो और आप आईटी में हो और शेफ की जॉब है, बस खाली जॉब देखा और अप्लाई कर दिया।
0: फेडरल बजट में पॉइंट्स टेस्ट को भी ऑप्टिमाइज करने की चर्चा हुई है, इस संदर्भ में किस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं और क्या इससे एप्लीकेंट्स के लिए कोई वास्तविक फर्क पड़ सकता है?
1: इट विल मेक अ डिफरेंस एंड आई होप इट डज, बिकॉज अगर आप पॉइंट्स टेस्ट सिस्टम जो अभी हमारा है, अगर उसको कोई भी लेमैन भी अगर देखेगा ना, कोई आम इंसान, तो वो भी बता सकता है कि ये कितना फ्लॉड और आउटडेटेड है। अब उसमें मान लो एक सिंपल सा एक एक बहुत ही वियर्ड चीज है कि एक इंग्लिश टेस्ट स्कोर होता है, ठीक है, अगर कोई एप्लीकेंट इंग्लिश के टेस्ट स्कोर पास करता है तो जो स्टूडेंट वीजा है उसके लिए उसकी वैलिडिटी है 2 साल, जो ग्रेजुएट वर्क वीजा है उसके लिए उसकी वैलिडिटी है 1 साल, जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप 482 या फिर परमानेंट एप्लीकेशन 189190491 है उसके लिए वही सेम इंग्लिश स्कोर वैलिड है 3 साल तक। अब ये सिस्टम किस लिए बनाई गई है और किस लिए लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं पता नहीं है, पर एक्सेप्ट करने के लिए भी चॉइस नहीं है क्योंकि इमिग्रेंट्स के पास वोटिंग राइट नहीं है। अब जिसके पास वोटिंग राइट नहीं है उनके साथ आप कुछ भी करो, जैसे भी रूल्स बनाओ, वो लोग क्या करेंगे ना। और रही बात पॉइंट्स टेस्ट रिफॉर्म की, जैसे नाटी ट्रांसलेशन का जो 5 पॉइंट्स है, अब आज के ज़माने में हाँ कोर्ट लेवल पे और ऑफिशियल लेवल पे डेफिनेटली ट्रांसलेटर्स का यूज़ होता है, ट्रांसलेटर्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हर एक इमिग्रेंट को ट्रांसलेशन टेस्ट पास करके 5 पॉइंट लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर आपको अभी कुछ ट्रांसलेट करना हो तो आप चैट जीपीटी में या कहीं पे भी कोई भी एआई ऑनलाइन टूल में इजीली एकदम एक्यूरेसी के साथ ट्रांसलेट कर सकते हो। प्लस जो एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट्स है, जैसे ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको 10 पॉइंट मिलते हैं। अब जो लोग इधर पढ़ने आते हैं या फिर वर्क वीजा पे आते हैं उनको कम मैक्सिमम 2 साल का या 3 साल का वर्क वीजा मिलता है। अब वो लोग 2 या 3 साल के वर्क वीजा में ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस 3 साल का इकट्ठा ही कैसे करेंगे ना। तो लॉजिकली देखा जाए, अगर उनको या गवर्नमेंट को इमिग्रेशन सिस्टम को सच में अच्छा बेहतर बनाना है तो उनको पॉइंट्स भी उस हिसाब से अवॉर्ड करने पड़ेंगे। जैसे मेरे हिसाब से इंग्लिश के पॉइंट शायद कभी एक्सपायर नहीं होने चाहिए, और अगर होते भी है तो उसका कोई लॉजिकल रीजन ही होना चाहिए, और ऑस्ट्रेलियन वर्क एक्सपीरियंसेस के लिए ज्यादा पॉइंट्स मिलने चाहिए। उससे फायदा ये होगा कि जो जेन्युइनली स्किल्ड एंड टैलेंटेड लोग हैं, फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोफेशनल्स, ट्रेड्स में भी अगर है तो उनके लिए अच्छे पाथवेज बनेंगे।
0: एक आखिरी सवाल, जो लोग अभी पीआर की उम्मीद में हैं या आवेदन कर रहे हैं, उन्हें किन बातों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? उनकी स्किल्स, रीजनल अपॉर्चुनिटीज़, वर्क एक्सपीरियंस या कोई और पहलू?
1: तो अपने स्किल्स पे काम करो। आई नो ये थोड़ा फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट शायद हो सकता है, बट स्किल्स पे काम इसलिए करना है क्योंकि वही चीज है जो तुम्हें डिफरेंशिएट करेगी बाकी से। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अब भी मास्टर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स या फिर मास्टर्स ऑफ बिजनेस मार्केटिंग, ये डिग्री सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, ये डिग्री में से पास आउट शायद आपको 15 हजार 20 हजार इंडियन स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, बट उसमें से सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 1000 या 1500 ही होंगे जिन्होंने इसकी सच में स्किल्स डेवलप करी और किसी एम्प्लॉयर के साथ काम किया और अपना करियर और प्रोफेशन में आगे बढ़ के या तो उस एम्प्लॉयर से स्पॉन्सरशिप लिया या तो फिर अच्छी सैलरी पे पहुंच के इनविटेशन लिया। एक सिंपल एग्जाम्पल है, मेरी एक बिजनेस एनालिस्ट क्लाइंट है, सबको ऐसा था कि बिजनेस एनालिस्ट को इन्विटेशन नहीं मिल रहा है, उसका अभी 1 मई पे 85 पॉइंट्स पे सब क्लास 190 विक्टोरिया का इनविटेशन आया है। वो यहाँ पे है और वो स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट ही आई थी, तो उसका इसलिए आया है क्योंकि उसने ड्यूरिंग स्टूडेंट टाइम इंटर्नशिप किया, फिर धीरे

0: आगे उसका करियर बढ़ाया, फिर एक कंपनी में जॉब ली और फिर अच्छी सैलरी पे पहुंची। और विक्टोरिया में जैसे सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी सारे स्टेट्स अगर आप देखो अभी, तो सबको ये रिक्वायरमेंट तो है ही कि आप अपने अपने फील्ड में पिछले 3, 6 या 12 महीने से काम कर रहे होते हो। तो एक ये टिप है, अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में हो तो मेक श्योर कि आप अच्छी जॉब में हो। और द फ्यूचर आई सी इज प्रोबेबली एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप्स, क्योंकि इस साल 4,500 सीट्स एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप्स को ज्यादा दी गई है। और सेकंड टिप, जिनको शायद प्रोफेशनल फील्ड्स में इंटरेस्ट नहीं है और जिनको ट्रेड्स में इंटरेस्ट है, उनके लिए भी अगर आप देखो तो TRA को या फिर स्किल असेसमेंट के लिए बहुत सारा बजट बढ़ाया है उन्होंने, क्योंकि बहुत स्लोनेस की वजह से लोगों का स्किल असेसमेंट आने में बहुत टाइम लग रहा था। तो या तो आप कोई हाई इन डिमांड ट्रेड्स ऑक्यूपेशन पे फोकस करो, या फिर आप अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपनी स्किल्स पे काम करके उसको पॉलिश करो। क्योंकि अगर आप जो फील्ड में हो वो फील्ड में आप अगर अच्छा काम नहीं कर पा रहे हो ना, तो ऑस्ट्रेलियन वीजा बहुत मुश्किल हो जाएगा।
1: SBS हिंदी के लिए ये रिपोर्ट आपके लिए प्रस्तुत की नबील हसन ने। इस ऑडियो पॉडकास्ट में व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं, SBS ना तो इनसे सहमत है और ना ही असहमत।
2: तो आपने सुनी ये बातचीत कि माइग्रेंट्स पर क्या असर पड़ सकता है ये जो अभी फेडरल बजट आया। माइग्रेंट्स यानी स्किल्ड वीजा, पॉइंट सिस्टम और स्टूडेंट वीजा आदि पर क्या आपके मन में कुछ सवाल आए हैं तो हमें अवश्य बताएं। और हाँ, आगे हम कार्यक्रम में बात करेंगे कोहिनूर हीरे पर। तो यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के पास कैसे पहुँचा, क्या आप जानते हैं? और इसकी जो भी आपके पास जानकारी है अवश्य हमें बताएं। भारत से रिपोर्ट भी आगे होगी। तो कार्यक्रम के साथ आप बने रहें, अपने संदेश भी भेजें। मिलते हूँ इस अंतराल के बाद।
3: NITV पर जानें उन मुद्दों के बारे में जो एबोरिजिनल और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए मायने रखते हैं। देखें NITV चैनल 34 और SBS ऑन डिमांड पर।
4: इनसाइट SBS का पुरस्कृत करंट अफेयर्स, ये उन विषयों पर चर्चा करने से नहीं डरता जिन पर अन्य लोग बात नहीं करना चाहेंगे। हर मंगलवार 8:30 बजे SBS और ऑन डिमांड पर।
3: पूरी दुनिया की कहानियों का एक संसार SBS वर्ल्ड मूवीज पर देखिए 7 दिन 2400 घंटे चैनल 32 पर मुफ्त या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम करें। अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्रों से लेकर क्लासिकल कल्ट फिल्मों तक, विश्व स्तरीय नाटक से लेकर गुदगुदाने वाली हास्य फिल्मों तक, देखिए SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर।
5: SBS साउथ

0: SBS South Asian. New news from here and hits from home.
1: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS audio app or website.
2: जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। sbs.com.au/guide पर जाएं।
3: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
4: SBS स्पोर्ट, खेल प्रेमियों के लिए नंबर एक जगह। साइकिलिंग, मोटर स्पोर्ट, विश्व एथलेटिक्स और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/sport पर जाएं।
5: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे तो हम बात करेंगे कोहिनूर हीरे पर, लेकिन अभी पहले भारत से हमारे संवाददाता विश्वरतन के साथ ये रिपोर्ट।

0: भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा को सफल बताया है। विपक्ष की आलोचना को खारिज करते हुए भाजपा ने कहा है कि 5 देशों की हालिया यात्रा कूटनीतिक रूप से काफी सफल रही है। भाजपा का दावा है कि दुनिया प्रधानमंत्री मोदी और भारत पर भरोसा जता रही है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल ने गुरुवार को इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने 5 देशों के दौरे को सफल बताते हुए कहा,
1: 5 देशों में 5 दिन में जिस प्रकार से भारत छाया हुआ था, जिस प्रकार से 5ों देश में गर्मजोशी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ, अलग अलग कार्यक्रम हुए, मूल भारत के लोगों ने उनका सम्मान किया, एक प्रकार से 5 देश 5 दिन लेकिन एक स्पष्ट संदेश भारत विश्व पटल पर बड़ी मजबूती के साथ आज खड़ा है, विश्व भारत को सम्मान और विश्वास के साथ देखता है।
0: भारत अमेरिका संबंध को लेकर भी सरकार आशान्वित है। अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो भारत के दौरे पर आ रहे हैं। कल यानी शनिवार को वे भारत पहुंचेंगे। उनकी 4 दिन की यात्रा को सकारात्मक बताते हुए पीयूष गोयल ने कहा,
1: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज ऑफन कॉल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट हिज वेरी क्लोज फ्रेंड एंड देयरफॉर आई थिंक द विजिट ऑफ मिस्टर मार्को रूबियो द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज एक्सट्रीमली टाइमली एंड रिफ्लेक्ट्स द ग्रोइंग पार्टनरशिप बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया which will provide newer and bigger opportunities to our youth, to our farmers, to our women, entrepreneurs, startups, businesses and industry, open up huge investment opportunities in India for US capital. In fact, in the last 6 months alone, we have heard big announcements aggregating more than $60 billion.
0: भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत साझेदारी की बात कही है। गुरुवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा,
2: President Trump deeply cares about the relationship with India. President Trump deeply cares about Prime Minister Modi. It is one of the reasons that this relationship is on this track and we're able to move things at a much faster rate.
0: पश्चिम एशिया संकट के बावजूद देश में ऊर्जा संकट की स्थिति नहीं है। सरकार लगातार लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह दे रही है। कुछ शहरों में पेट्रोल की किल्लत होने की बात सामने आई है। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने इस बारे में कहा,
3: कुछ पेट्रोल पंप पर और कुछ एरियाज में ये देखा जा रहा है कि जो बाइंग है वो इंक्रीज हुई है और काफी ज्यादा ग्रोथ भी देखी जा रही है। मंत्रालय में भी इसे एनालाइज किया है और ये पाया है कि कुछ इंक्रीज तो एग्रीकल्चर सीजन के चलते हैं, इसके अलावा कुछ इंक्रीज इसलिए भी है क्योंकि बल्क जो हमारा डीजल था, जो बल्क सप्लाईज थी वो रिटेल पर शिफ्ट हो रही हैं, इसके अलावा प्राइस डिफरेंस है, परंतु इसके बावजूद भी हमारे पास सफिशेंट सप्लाईज हैं और डिमांड के हिसाब से तुरंत के तुरंत एक्शन लिया जा रहा है और हर पेट्रोल पंप पर सप्लाई को सुनिश्चित करने का हर प्रयास किया जा रहा है।
0: भाजपा और कांग्रेस के बीच एक और विवाद गहराने लगा है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार बताया है। राहुल गांधी ने संविधान पर आक्रमण करने वाला इन्हें बताते हुए इस शब्द का प्रयोग किया। इससे भाजपा तिलमिलाई हुई है। गुरुवार को कई जगहों पर राहुल गांधी के विरोध में प्रदर्शन हुए। दिल्ली पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है। राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष मदन राठौर ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा,
4: घटिया स्तर की शब्दावली प्रयोग में ले लेना, क्या वो अपने मुखिया के लिए नहीं बोल रहे हैं? इस देश के मुखिया के लिए नहीं बोल रहे हैं ऐसे शब्द? मैं यदि कहूँ कि परिवार का मुखिया, परिवार का प्रमुख, उसके लिए ऐसा शब्द प्रयोग करता है तो कोई भी परिवार बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसी शब्दावली परिवार का कोई भी सदस्य बर्दाश्त नहीं करेगा कि अपने परिवार के मुखिया के लिए हल्के स्तर का शब्द प्रयोग कर दे, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा।
0: वही कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री

0: मोदी को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री का पद किसी एक पार्टी के लिए नहीं होता।
1: प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में, मुख्यमंत्री बनने के बाद में, वो तमाम पार्टियों को जाता है। तमाम पार्टी के लोग जो होते हैं, देशवासी होते हैं, प्रदेशवासी होते हैं, उन सब की रक्षा करने का, उनके साथ में न्याय सुनिश्चित करने का उनका धर्म बनता है। दुर्भाग्य से अभी वो भावना मोदी जी में नहीं है। वो अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के बाद में आप सभी पार्टियों के जो विचारधारा के लोग हैं, आम लोग, उन सबके साथ में उनका प्यार मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए। ये आज भावना नहीं है, दुर्भाग्य की बात है।
0: राहुल गांधी के बयान का बचाव करते हुए पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भाजपा इसी भाषा का प्रयोग अपने विरोधियों के लिए करती आई है।
2: अब राहुल गांधी ने कोई बात कह दी तो इतना ज्यादा हंगामा क्यों? ये तो जबान बनी है बीजेपी की, हर मुसलमान को, हर सेक्युलर इंसान को गद्दार कहना, ट्रेटर कहना, पाकिस्तान जाओ, अब तो कहते हैं ईरान चले जाओ। इसलिए मुझे लगता है जो जबान, जो बीज बीजेपी ने बोया इस मुल्क के अंदर, उसी वही बीज अब फल दे रहा है।
0: और अब चर्चा काकरोच जनता पार्टी की, जो अपने अस्तित्व में आने के 5 दिन के भीतर ही इंटरनेट पर छा गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं की तुलना काकरोच से की थी। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी थी, लेकिन उनके इस बयान ने भारतीय काकरोच पार्टी को जन्म दे दिया। फिलहाल यह एक व्यंगात्मक प्लेटफॉर्म ही है, पर युवाओं में तेजी से पहचान बना रही है। इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स की संख्या भाजपा और कांग्रेस के फॉलोअर्स से काफी अधिक हो गए हैं। इसका एक्स अकाउंट भारत ने

0: दुनिया की कहानियों का एक संसार SBS वर्ल्ड मूवीज पर देखिए सातों दिन 2400 घंटे चैनल 32 पर मुफ्त या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम करें। आपके लिए लेकर आए हैं पुरस्कार विजेता नाटक, अंतर्राष्ट्रीय खेल और वृत्त चित्रों की दुनिया। SBS विविधताओं का एक संसार। देखिए SBS अपनी टीवी पर चैनल 30 और SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर। चैनल 33 पर SBS फूड जो परोसता है सबसे स्वादिष्ट जगह, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन में बड़े नाम। SBS फूड चैनल 33 पर 2400 घंटे। SBS न्यूज इन डेप्थ पॉडकास्ट, देश और दुनिया भर के समाचार जो अहमियत रखते हैं। सुनिए SBS न्यूज इन डेप्थ आपके पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप पर या sbs.com.au/audio पर जाएं। SBS ऑन डिमांड पर सैकड़ों टीवी शो और फिल्में मुफ्त में उपलब्ध हैं। कहानियों की इस दुनिया को अपने फोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट या लैपटॉप पर देखें। आज ही SBS ऑन डिमांड ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं।
1: SBS साउथ एशियन ब्रिंग्स यू क्लोजर टू साउथ एशिया न्यूज इन 10 लैंग्वेजेस, द SBS स्पाइस पॉडकास्ट एंड द हॉटेस्ट ट्रैक्स ऑन SBS साउथ एशियन रेडियो। देयर इज सो मच टू एक्सप्लोर। चेक इट आउट नाउ ऑन द SBS ऑडियो ऐप और वेबसाइट।
2: SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है, जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुनें। sbs.com.au/hindi पर जाएं।

0: SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें।
1: Learn to speak English. Find videos, podcasts and advice to help you settle into daily life in Australia. Speak everyday Aussie with SBS Learn English.
2: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, इस बीच हमारे श्रोता चेतन शाह जी ने कोहिनूर के बारे में काफ़ी जानकारी मुझे लिख भेजी है और हमारे एक श्रोता ने अपनी परेशानी भी साझा की है कि ये जो नए बदलाव आए हैं उसमें कहीं पर पेरेंट वीज़ा के लिए जो वो लंबे अरसे से यानी पिछले 8 सालों से वो इंतज़ार कर रहे हैं तो वो जानना चाहते थे। तो आपने अपना नाम तो नहीं लिखा है लेकिन इसके बारे में हम अवश्य आगे चर्चा कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके मन में कोई सवाल हैं तो आप हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए। और कोहिनूर के बारे में मैं आपसे तो जानकारी लेना चाहती ही थी। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ जानकारी लेते हैं और फिर आप बताइएगा।
3: मैं हूँ अनीता बरार। दुनिया के सबसे चर्चित और विवादित हीरों में शामिल कोहिनूर कुछ समय पहले फिर से सुर्खियों में आया जब न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोरान ममदानी ने अमेरिका के दौरे पर आए किंग चार्ल्स तृतीय से कोहिनूर को भारत लौटाने की अपील की। वैसे भारत में 1950 के दशक से समय समय पर कोहिनूर की वापसी का मुद्दा उठता रहा है। कोहिनूर का मूल भारत की गोलकुंडा खदानों में माना जाता है और कुछ मान्यताओं में इसे भागवत पुराण की मणि से भी जोड़ा जाता है। कभी कोहिनूर मुगल बादशाह शाहजहां के मयूर सिंहासन का हिस्सा था, फिर ये ईरानी और अफगान शासकों के बाद महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा और अंततः ब्रिटिश साम्राज्य के पास पहुँच गया। तो आज बात की है विक्टोरिया में अर्जुन रैना जी के साथ, जिनके पूर्वज उस समय के गवाह रहे जब कोहिनूर ब्रिटेन के पास गया, और वो बताते हैं।
4: जो ये कोहिनूर है इसका ये अब महाराजा रंजीत सिंह के पास अफगानों से कैसे आई वो एक अलग कहानी है। लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ उसमें ये था कि ये ट्रीटीज ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो जो युद्ध लड़ा जा रहा था, ये उसको कहते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर और सेकंड एंग्लो सिख वॉर, ये 1845, 1846 और फिर 1848, 1849 के करीब है। तो इस

0: Hits from Home.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: तो ये समझना जरूरी है कि ये ट्रीटीज क्या थी. जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर ट्रीटी थी वो गुलाब सिंह डोगरा के साथ ट्रीटी थी. कश्मीर को अलग किया गया और कश्मीर को जम्मू के साथ जोड़ा गया था. इसीलिए हमेशा होता है जम्मू और कश्मीर बोला. जो डोगरा ने खरीदा पैसे दे के 75 लाख, वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी. ट्रीटी ऑफ लाहौर में वो थी दरबार के साथ, दिलीप सिंह के साथ और जो जो कोर्ट है उसके साथ ट्रीटी थी. और उसमें ये तय किया गया था कि ये जमीन ऐसे कट के कश्मीर और जम्मू में जाएगी और ये जमीन इन लाहौर दरबार के पास रहेगी. और फिर लाहौर दरबार का ये जुर्माना देगा और लाहौर दरबार के ये रूल्स होंगे, जैसे कि वो और यूरोपियंस मर्सनरीज और सोल्जर्स को नहीं रख सकते हैं और लेकिन वो ट्रेड कर सकते. तो ये लाहौर सेकेंड ट्रीटी फर्स्ट ट्रीटी ऑफ लाहौर के साथ था. तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे बहुत हलचल थी लाहौर दरबार में, यानी कि जब तक दिलीप सिंह आए तख्त पे, 6 साल के दिलीप सिंह, यानी कि उनके पीछे उनकी मां रानी जिंदा, तब तक तो कई मौतें हो चुकी थी, जैसे खड़क सिंह की, जैसे शेर सिंह की, जैसे बीबी चांद कौर. ये बार बार ये बने तख्त पे बैठे और फिर ये हटाए गए. बहुत हलचल थी, मारकाट हुई और एक मौत जो हुई थी वो थी रानी जिंदा के भाई जवाहर सिंह की, यानी कि दिलीप सिंह के मामा हुए ना. तो दिलीप सिंह के मामा को मारा खालसा ने ही, उनकी फौज ने, क्योंकि खालसा चाह रहे थे कि पिशौरा सिंह एक थे वो भी वारिस थे, पिशौरा सिंह को बनाया जाए. लेकिन जो वहां के दरबारी थे और अंग्रेजों के साथ जो समझौता था वो था दिलीप सिंह को महाराजा बनाने का. तो इसलिए दरबार घबरा गया कि ये खालसा जो है, जो यहाँ अपनी फौज जो है ये संभलेगी नहीं. और इसीलिए उन्होंने फिर इनवाइट किया एक कंपनी के, आप कि आप एक गैरिसन यहाँ छोड़ो और आप अपना एक रेजिडेंट यहाँ छोड़ो, जो जब तक ये महाराजे अपने पैर पे नहीं खड़े होते, बड़े नहीं होते, उनकी भी रक्षा करेंगे. तो उम्मीद ये थी, दरबारियों की उम्मीद ये थी कि जैसे महाराजा रंजीत सिंह के साथ 30-35 साल उन्होंने एक रिश्ता कायम रखा, स्टेबल रखा, और जैसे उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डोगरा राजा को पहचान के उससे एक रिश्ता बनाया अंग्रेजों ने गुलाब सिंह के साथ, वैसे जब महाराजा दिलीप सिंह अगर वो खुद अपनी ताकत पे आ जाए, खड़े हो जाए और एक लाहौर दरबार स्टेबल हो जाए, तब तक अंग्रेजों के साथ ये वैसा रिश्ता बना पाएंगे. लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि वो खून खराब हुआ. तो फिर अंग्रेजों ने आके एक अग्रीमेंट में, मैंने ये पढ़ा है कि पहले एक ट्रीटी ऑफ लाहौर एडिशन एक किया, एक अग्रीमेंट के अब आप संभाल नहीं पा रहे हो, अब हम टेक ओवर करेंगे और फिर आपको उसमें एज अग्रीमेंट आपको कोहिनूर भी देना पड़ेगा. ये स्लाइटली हिस्टोरियन में कंफ्यूजन है कि ये बिटवीन ट्रीटी ऑफ लाहौर में फिर ये कब घुसा. ऑलमोस्ट वो सेकेंड ट्रीटी ऑफ लाहौर लिखी गई कि वो एक सिर्फ आदेश था ब्रिटिश सरकार का, कि ट्रीटी का मतलब है बराबरी का, एक सॉवरेनिटी. लेकिन जो सेकेंड ट्रीटी ऑफ लाहौर है उसमें तो सॉवरेनिटी हटा रहे हैं, टोटल एनेक्सेशन हुआ. टोटल एनेक्सेशन यानी कि पूरा कब्जा लाहौर दरबार पर. महाराजा को 1.5 लाख रुपए शायद तय किए, 4 लाख रुपए तय किए और रानी जिंदा को अलग कर दिया. तो ये जब पूरा कब्जा हुआ उसका एक सिंबॉलिक सिंबल ये था कि उसमें एनेक्सेशन, उसमें ये कोहिनूर की जब्ती भी उसमें आई.
5: तो जाहिर सी बात है अगर

0: ट्रीटी में कोई चीज गई है तो वो वापस तो नहीं आ सकती थी।
1: इंटरनेशनल लॉ में आ गई, तो ये कहना कि लूटा कोहिनूर
0: हाँ
1: को लूटा नहीं, जो अयोध्या प्रसाद और दीनानाथ मेरे वो उनके पिता थे गंगाराम, वो उनसे ये रणजीत सिंह जी से रिश्ता शुरू हुआ, और वो बहुत करीबी से, उन्होंने 1809 की ट्रीटी लिखी थी, और उनके पास जो उन महाराजा की मोहर होती है, जो स्टैंप होता है, उसके वो रखवाले थे, और उनके फाइनेंस मिनिस्टर भी थे वो। तो कोहिनूर वॉज पार्ट ऑफ द ट्रीटी।
0: जी, और अगर वो वापस आता तो वो भी किसी पार्ट ऑफ द ट्रीटी ही वापस आ सकता था।
1: बिल्कुल, दो दो सावन पार को फिर मेज पे बैठ के, फिर बड़े तरीके से लिखत पढ़त करके, और
0: जी
1: फिर उसको उसको दिया जाए। आप सही कह रही हो, सही पकड़ा कि दिस इज हिस्टोरिकली थ्रू थ्रू अ ट्रीटी,
0: जी
1: एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट ट्रीटीज आर, यू नो।
0: बस एक बात और मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाह रही हूँ कि अयोध्या प्रसाद जी जो कि आपके पूर्वज थे, वो आपका उनके साथ क्या रिश्ता है?
1: मेरे वो परदादा के दादा हैं, यानी कि डायरेक्ट लाइन है, और
0: जी
1: हम कश्मीरी लोग थे जो महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में, तो जैसे गंगाराम जो थे और दीनानाथ जो थे वो
0: जी
1: वित्त मंत्री थे, वो फाइनेंस संभालते थे, और अयोध्या प्रसाद योद्धा थे, वो फौजी खास में उनका काम था, और उन्होंने अयोध्या प्रसाद वाकिया जंग जो उन्होंने 1845-40 के फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का क्रॉनिकल पर्शियन में लिखा था, और जो अब अंग्रेजी में ऑनलाइन भी उसके कुछ एक्सर्प्ट्स हैं।
0: जी, तो उन्हीं के माध्यम से हम इतिहास के उन पन्नों को पलट भी पा रहे हैं। बात करके आपसे कोहिनूर के बारे में ये जो जानकारी आपने दी, के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूंगी।
1: नहीं, आपका धन्यवाद, आपने भी एकदम सही इसकी नोक पकड़ी कि ये ट्रीटी के साथ जुड़ा हुआ रिश्ता है।
0: जी, तो हम बातचीत कर रहे थे अर्जुन रैना जी के साथ में, जिनके पूर्वज उस समय मौजूद थे जब कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के पास पहुंचा। उन्होंने अपनी बातचीत में ये भी बताया कि पंजाब का विभाजन हुआ और उससे पंजाब और जम्मू कश्मीर दो भागों में रहा, वो पूरी की पूरी ज़मीन दो भागों में बट गई। उनके पूर्वज इस विभाजन रेखा को लगाने में भी मुख्य रूप से जुड़े हुए थे। तो कभी सोचा है कि इस विषय पर उनके साथ आगे बात करेंगे कि वो विभाजन रेखा लगाने का तरीका क्या था? वो इसलिए मैं जानना चाहती थी उनसे, और अवश्य जानूंगी क्योंकि हम भारत के विभाजन के बारे में भी जानते हैं और किस तरह से वो रेखा लगाई गई। खैर, उनकी बातें आगे करेंगे, अभी कुछ ये गाना सुनते चलते हैं।

श्रोताओं, आशा कर रही हूँ कि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा, सभी अंश आपको पसंद आए होंगे। तो आपसे अगली मुलाकात तक के लिए अब आज्ञा ले रही हूँ। अनीता बरार का नमस्कार।

Desi Dance Party on SBS South Asian.

0: SBS South Asian।
1: यात्रियों से निवेदन है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध के सेटल हो जाएं क्योंकि इस रेलगाड़ी से बाहर जाने का कोई द्वार नहीं है।
2: ए राजा बजाना।

नेचुरल चोरी शादी।

कांटे कांट मेरे दिल पे जुबान है, भेद दिल ये ऐसा कमाल है, सारा पूछूं आज किसका ख्याल है।

उसके इशारों पे मैं चला। जब वो चले संसार झुके, जब वो मुड़े तरनी बहे, जब हाथ उठाए आंधी रुके, जब पल के झुकाए तो वक्त रुके। डरता करता फिर भी है मेरा मन, नाम सुन के बढ़ जाए धड़कन, मिट्टी पे पड़ जाओ उसके कदम, करते सक जमीन।

समंदर के जैसे बढ़ती लहर, पवन डर के जैसे ढाती कहर, सोने सा चमके उसका बदन, छू दे तो अमृत बन जाए शहर। असलिया चेहरा उसे सब है पता, चाल है गहरा उसे कुछ न छुपा, दिल है जो ठहरा उसे नहीं है पता, क्या तेरी माया जरा मुझे भी

पता, ढूंढूं मैं उसको कहां, होठों पे जिसके लिपटा जहां, इतना दर्द क्यों मैंने सहा, जब मिलने ही थे दोनों जहां। रुक गई मेरी सांस भी, महसूस करने की आस भी, खुल जा मुझ में जैसे चाशनी, कट गई ये साली रात भी।

Saturday Party Tune. Desi Dance Party on SBS South Asian.

किया कुछ ऐसा कि मैं बाकी सब लड़कियों के बारे में सोचना छोड़ रहा हूँ। माना कि थोड़ा बिजी हूँ, तेरी मेरी शादी के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। कब से करूँ तुझको मैं चेस बेबी, दिल में मुझे दे दे थोड़ी स्पेस बेबी, ना मुझ पे कोई मीटू वाला केस बेबी, शरीफ हूँ।

0: subscribe to SBS South Asian on YouTube to see our latest content.
1: और सुनना है तो सब्सक्राइब करो टी सीरीज़।

0: हिट
1: आफ्टर हिट
0: आफ्टर हिट सारे तेरे कंगड़े दिस इज SBS साउथ एशियन।
2: प्यार की तरंगे सरगम बन जाती है, संगीत के हजारों धुने गूंजने लगती है।

0: SBS South Asian.
1: Yo, lavish.

0: SBS South Asian.
1: Jiggly.

0: Your news from here
1: and hits from home.
0: SBS South Asian.
2: Hey, yo.